0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: brought to you by
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर।
5: वजीर आजम के हुकुम से पिम्स थाने के जिम्मेवारन खिलाफ एक्शन शुरू। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अहम उहदेदार मुअतल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर शुरुआती तौर से 120 मुअतल। NICH इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो खिदमतू पिम्स हवाले। डेपुटेशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुकरर ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रजा हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अहमद अमजद। डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुताहिर शाह सीनियर रजिस्ट्रार गायनी डॉक्टर निगार नवाज। एसोसिएट प्रोफेसर पेडाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान भी मुअतल। जांच नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया के फौरी तौर से पिम्स के एडमिन पोल में रिपोर्ट करने की हिदायतूं। डॉक्टर नजरत यासमीन पिम्स के चिल्ड्रेन वार्ड की ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुकरर। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की चार्ज डिनी वही। डॉक्टर शुमाइला हेड ऑफ गायनी मुकरर

0: कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन
1: जे मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन ऐं मुकामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई। फील्ड मार्शल मुकामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जे टेस्ट ट्रायल जो मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मुकामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जदत जो अज़म वरजायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मुड़ल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दी वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढी उमिरि जे ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निगरियुनि जा पाबंदी मुड़ियल तंज़ीम BLA बाबति शिरक नारायण शाह बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़ियाउल लांगो चयो आहे त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 सालनि जी फातिमा खे वरगलायो। निगरियुनि जा वालदेन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जो दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवाइयूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह कराची जे सेफ इस्पताल में कार्डियक विंग जो इफ़्ताह करे छॾियो। तक़रीब में नाड़े वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब शरीक थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त कराची रोशनियुनि ऐं उमेदुनि ऐं सलाहियतुनि जो शहर आहे। मुआशी इस्तक़ाम जो समर बि अवाम ताईं पहुचायो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सेफी इस्पताल जो दिलि वारो वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क जे मरीज़नि खे लाभ ॾींदो। बोरी बिरादरी जूनी फलाई ख़िदमतूं सराह जोगियूं आहिनि। गुल प्लाज़ा इंतिज़ामिया ॼाण हूंदे बि नुक़्स ख़तम न कया। इमारत ख़तरनाक ऐं फायर सेफ्टी कानूननि जी भंजकड़ी वारे हालत में वापारी इस्तेमाल में रही। इमारत में स्पीकर सिस्टम मौजूदु हुजण बावजूद इस्तेमाल न कयो वियो। सिविल डिफेंस जे रिपोर्ट में इमारत अंदरि ख़ारजी रस्तनि जे खामियुनि जी निशानदेही कई वई हुई। बाह लॻण वक़्त अक्सर रस्ता बंदि या रुकावटुनि सबबि मुतासिर हुआ। सिंध जे घरू खाते गुल प्लाज़ा थाने बाबति रिपोर्ट पधरी करे छॾी। अदालती कमीशन पंहिंजी रिपोर्ट में धुरियुनि जे ज़िमारनि जो तइन कयो। रिपोर्ट मूजिबि बाह जो इतलाउ फायर ब्रिगेड खे ॾियण में इंतिहाई गैर दानिशदाणी देर कई वई। बिजली बंदि थियण सबबि माण्हुनि जो ॿाहिरि निकिरण जा इम्कान वधीक घटिजी विया। हुरुन जे रुहानी पेशवा पीर पघारे जमायत खे नियाणियुनि जी मर्ज़ी बिना शादी करण खां रोके छॾियो। नंढी उमिरि नंढी जुमार में नियाणियुनि जी शादी न कराइण जो बि हुकुम। तलाक याफ़्ता औरतुनि जी ॿी शादी आॾो रंडक न बणजण जी हिदायत। पीर पघार चयो आहे त कुझु ख़ानदान धीअरुनि जी मर्ज़ी खां सवाइ ज़ोरी शादी कराइनि था, जेको सिलसिलो बंदि थियणु घुर्जे। नियाणी जी शादी मर्ज़ी पुछे ख़ानदान या ख़ानदान खां ॿाहिरि बि करे सघिजे थी। औरत खे माउ पीउ ऐं मुड़ुस जी मिल्कियत मां बि शरी हिसो ॾिनो वञे। मिल्कियत बचाइण लाइ नियाणियुनि जी शादी न कराइण वारो सिलसिलो बि ख़तम कयो वञे। मुड़ुसनि जे ज़ुल्मनि जो शिकार औरतुनि सां बि शरी ऐं कानून मूजिबि हक़ ॾेई इंसाफ़ कयो वञे। हथ बंदि थियण बि औरत जी शादी में रुकावट न बणजण घुर्जनि। नियाणियुनि जी शादी लाइ हथ बंदि वारो सिलसिलो 8 ॾींहं लाइ दरख़्वास्त ते मुअतल।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज़ 0.6।

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Har Maah Munafa Aamdani Mein Izafa Bank Al Habib Rishta Bharose Ka.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। महफूज को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
5: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
4: आवाज की डोर से बंधा हुआ
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
1: आज नहीं भाई डॉक्टर शुमाइल आहेडा अफगान मुकर्रर
2: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा सारे रिपोर्ट
3: सर, इंतजार आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था आप क्या कहेंगे
2: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है
3: आपने एक रिजाइन दिया भी है इस हवाले से भी कुछ इतलात है आपने रिजाइन पुट कर दिया
2: रिपोर्ट आ जाएगी सब क्लियर हो जाएगा
1: मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे सेहत वारो वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल जो साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्पसाने जो दौरो तारिक फजल चौधरी चे तो पिम्पसाने की जांच रिपोर्ट में सामू इंदड़न खिलाफ कार्रवाई भी थी पीपल्स पार्टी पिम्पसाने की जांच रिपोर्ट पदरी करण जो मुतालबो कर छो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे पीपल्स पार्टी सेनेटर पलोशा खान है तो सभी गठजोड़ है शफाफ जांच कि लगे तो नंडन आफिसर मथा मलबो किराय वो वडन आफिसरन के कुछ नो साने जो शायद मिटाण की कोशिश थी रही है पिम्स के टन साल दौरान 22 अरब रुपया मिला पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के कमन जो एतराब मुल्की निजाम के बेबिटे मयार वारो करार दई छो तकरीब खिताब कदे मुसद्दिक मलिक कें भी सियासतदान जहा 12

अली पहिरीं बि शबेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे। रिथ आणण जो मक़सदु बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकाणीअ चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़ो पेश करणु आहे। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि पास कयो वेंदो। मुल्की मईशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 3% मां

रहिया जिन ॾेती लेतीअ जे मामले तां गुलबार खे ज़हर ॾेई राणीपुर में फिटो करे छॾियो। असां नौजवान खे गिम्स अस्पताल दाख़िल करायो जिते हू फोत थी वियो। रहीम यार खान में पुलिस पारां मुक़ाबले में बडवारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जे मौजूदगीअ जे इतलाउ ते छापो आयो त जवाबदारनि फायरिंग कई। पुलिस जे जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हुसनैन ऐं अलर्ट ॾितो जमाली मारिजी वियो। ऐं नेपाल मां आयल बोट जे नतीजे में फोतियुनि जो अंगु वधी 616 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में 7 ॼणनि जे फोत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जका वह बेहतर थिए थी। हाँ जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्ज में जो महफूज रहे।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: अक्सर मान जो सवाल होंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
5: GFM 88
4: नेटवर्क
6: सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: बोर्ड के नतीजे में फौतिन जो अंग वधी 734 थी वियो 2000 खां वधीक मानू अञा भी गुम तिब्बत में भी 7 जणन जी फौत थियण जी तस्दीक 554 बदस्तूर गुम भारत में नेपाल में 320 भारतीय शहरन जी गुम होण जी तस्दीक करे छॾी नेपाली इख़्तियारनि मूजिब गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जी कैसे हैं, सुबह का सलाम मेरा आपको बहुत चाहिए। तो जी कैसे हैं और कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? और इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि आज है इतवार का दिन, जैसा कि हम लोग पूरा कर रहे होते हैं 7 दिन वेट सिर्फ एक इतवार के आने का, ताकि आपकी और मेरी बात हो सके। जी आपकी प्यारी सी आवाज के साथ, अपनी प्यारी सी आवाज के साथ आपके साथ मौजूद है आज जैसा एक बार फिर मौजूद है 2 घंटे के लिए आपके साथ देने वाली है, आपसे बातें सुनने वाली है और आपकी सारी परेशानियों को सुन के उनका हल निकालने वाली है। ओके जी, तो जी सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ज्वाइन कर लेना है। मुझे ज्वाइन करने के साथ आपने क्या करना है, सबसे पहले परेशान नहीं होना कि आपने मुझे टाइप कैसे करना है, मैसेज कैसे टाइप करना है, सेंड कैसे करना है, मुझे ज्वाइन कैसे करना है, मेरे सवाल को सुनना कैसे है। तो मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे ज्वाइन करने के लिए आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, मोबाइल उठाना और टाइप करना 8881 पे एस के आर लिख के अपना नाम और अपने प्यार से शहर का नाम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। और जो मुझे लाइव फेसबुक से सुनना चाहता है, फेसबुक को ज्वाइन करने के लिए अपने फेसबुक को ऑन कर लेना है और वहां पर जाकर GFM88 सर्च करना। जैसे ही आपको मेरे नाम का फायर दिख जाता है विदाजी सना के नाम से, तो आपने वहां पर जाकर मुझे कमेंट करना है और कमेंट करने के साथ साथ मुझे बताना है कि आप मुझे कहां से सुन रहे हैं और कब से सुन रहे हैं।

0: अच्छा जी, इससे पहले देखने के बारे में बताती हूँ कि यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की।
1: It's 11, time check.

0: GA Sakhar FM 88. हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
1: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बजाय सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ जी एफ एम।

0: 88 नेटवर्क दे।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: वादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

तो ऐसे ही होता है। लेकिन जो अल्लाह ताला की हवा चल रही होती है बाहर, चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, तो अगर आपको धूप में भी अलग तरह की हवा मिल रही है तो आप वो जाके लिया करें बनिस्बत इस एसी के। हालांकि जरूरत के अलावा आप घर से बाहर भी मत जाया करें, और घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि सारे सारे दिन आप एसी में रहा करें, आप पंखे में बैठा करें। और जिसके घर में वैसे कुदरती हवा आ रही होती तो वो तो एक बात ही अलग है भाई, कुदरती की हवा की बात वाकई बहुत अलग है। क्योंकि जब आप लोगों को पता चलता है कि जो बाहर की हवाएं जरूरत अल्लाह ने चलाई हुई होती है वो आपकी बॉडी को फ्रेश करती है और ताजा रखती है, बिल्कुल आप काम करने का दिल भी करता है आपका और एक्टिव रहता है इंसान। लेकिन जो एसी होती है, एसी की ठंडक होती है, वो मसनूई होती है, इंसानों की बनाई हुई होती है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोग जो अगर काम करने का दिल भी करा होता तो एसी में जाने के बाद आपका बिल्कुल दिल नहीं करा होता, ये आप लोग जाके आजमा भी सकते हैं और अगले सवाल का आप लोग मुझे बता भी सकते हैं। ऐसे ये एक सवाल भी है कि आप लोग जाएंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे और अगले सवाल का मुझे जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही कि जो अल्लाह ताला की जो हवा है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें जाके बैठते हैं, खेलते हैं, फिरते हैं, जो भी है, तो वो हमें ताजा रखती है, कभी थकाती नहीं है और मायूस नहीं होने देती, जो भी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एसी में बैठ जाते हो और एसी में बैठने के बाद आपको काम करने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, तो ये चीजें आप लोग नोट भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी, क्योंकि मैंने नोट किया है इसलिए मैंने आपको बताइए कि इस चीज से बचने के लिए आप लोग क्या करना है। एसी को कम यूज करना, लेकिन बिना फालतू घर से बाहर नहीं जाना। घर में रहने का मकसद ये भी नहीं कि आपने एसी में बैठना, पंखे को यूज करें, पंखे के नीचे बैठे और साथ में अलग तरह की जो हवा आती है आप विंडोज खोल लें, दरवाजा खोल लें, वहां की हवा इस्तेमाल करें। यार आप लोगों को पता चलेगा कि जिंदगी असल है क्या, गर्मी है तो क्या हुआ, अल्लाह ने हवा भी तो चलाई होती है ना। नहीं चल रही होती आप ठीक है बैठ जाओ, ये भी नहीं कि एसी में ना बैठो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको कम कर देना है तो आपकी सेहत वगैरह जो भी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी ऑब्जर्व की भी बात है और क्या बोलते हैं अप्लाई की भी बात है अपने ऊपर, तो मैंने ये चीज करके देखी है।

इसके अलावा मेरे पास एक और सॉन्ग है जो कि अलन फकीर का सॉन्ग हमारे पास है, जो कि रेमिक्स सॉन्ग है, सूफी वाइब जिसमें आती है। तो हम लोग इतना सारा सॉन्ग सुने, क्यों ना सूफी वाइब भी हम लोग सुनेंगे और तेरे इश्क में जो भी, ये हम लोग सुनते हैं अलन फकीर की आवाज में। तो जी मैं करती हूँ प्ले और उसको प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद करेंगे तो आपके लोगों का सवाल का जवाब लूंगी आप लोगों से। ओके जी, तो सुनते हैं यहाँ पर, रवि का मेरे साथ करें, मेरे साथ एंजॉय सूफी वाइब।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफ
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: Express PM. This time check is brought to you by
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
4: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
5: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
0: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Yulia Granular. Mitiye

एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सादिया रियाज ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मोतल। चार्ज नर्स नसरीन ऐं लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिट पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमीन पिम्स

अठहठ मोरीअ में आबाद घरनि जो वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। छोटकी गुजरावा जे आबाद घरनि वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। आबाद घरनि चयो आहे त आबपाशी खातो रिश्वत न ॾियण तां वाटर कोर्स बंदि कराए छॾियो आहे। 4 लख रुपया रिश्वत घुरी रहियो आहे। वाटर कोर्स खोलाए परेशानियुनि खे ख़तमु कयो वञे। गाज़ी अहमद जे शौकत कॉलोनीअ में रहवासियुनि जो गंदे पाणी निकाल न कराइण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो। मुज़ाहिरीन चयो त नालनि जी सफ़ाई न थियण करे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जनम वरितो आहे। नालनि जो गंदो पाणी घरनि ऐं घिटियुनि में बीहण सबबि मछरनि जो आज़ार वधी वियो आहे। गंदो पाणी फौरी तौर ते निकाल करायो वञे। ऐं नेपाल आयल बोर्ड जे नतीजे में फोतियुनि जो अंगु वधी 724 थी वियो। 2000 खां वधीक माण्हू अञा बि गुम। तिब्बत में बि 7 ॼणनि जी फोत थियण जी तसदीक। 554 बदस्तूर गुम। भारत बि नेपाल में 320 भारतीय शहरनि जे गुम हुअण जी तसदीक करे छॾी। नेपाली इख़्तियारनि मूजिबि गुम थियल माण्हुनि जी ॻोल्हा वारो सिलसिलो जारी आहे।

अर्थम जी बिल्कुल। और मतलब कहते हैं कि जो आपका नाक का जो नोज का जो हमारे साइज होता है वो आपके जो हाथों का अंगूठा होता है उसके बराबर होता है। ओके, आपका सवाल का जवाब मेरे पास आ गया, लेकिन आपने मुझे अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम नहीं बताया। नाम भी बताते अगर आपका जवाब ठीक था तो आपका सॉन्ग प्ले हो जाता, लेकिन आपने नाम नहीं बताया। अभी टाइम है, आप मुझे टाइम के साथ साथ अपने सॉन्ग का नाम बता सकते हैं। और इसके अलावा इकबाल लाशारी भी मुझे सॉन्ग का जवाब देते हुए कहते हैं कि ले सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं। कहते हैं कि बाजी सना सवाल का जवाब है नोज का साइज फिंगर से मिलता है। ओके जी, आपने भी अपने सॉन्ग का नाम मुझे नहीं बताया, अगर आप भी अपना नाम बता देते, अगर आपका जवाब ठीक होता तो हम जरूर प्ले कर देते। मेरे सबके आप लोगों के जो भी जवाब है वो सब कुछ हमने रीड आउट कर दिए हैं, रख दिए हैं सामने, लेकिन जब सॉन्ग प्ले होगा तो आप लोग समझ जाएगा कि किसका जवाब ठीक था। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मीर शौकत अली, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी मिजाज है? और शौकत शर्म मेरा पुरानी मीरपुर खास से कैसी है आरजे साहिबा, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन सब आमीन। और साथ में कहते हैं कि भाई

आपको बता दूं कि भाई वालेकुम सलाम, और मैं वैसे तो ठीक हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बुखार चल रहा है जो कि काफी टाइम से डेढ़ तो मंथ हो गए हैं और ये प्रॉपर नहीं जा रहा। और इसके अलावा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, मेरी शौकत अली शायद आपने मुझे आज ही ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है। ऐसे ही आपने मुझे हर तवर को सुनते रहना है, ज्वाइन करते रहना है, मुझसे बात करती रहनी है और मुझे बर्दाश्त करते रहना जैसे कि मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। ऐसे ही नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ भाई। और इसके अलावा मैं बताऊँ कि बहुत अच्छा लगा, मेरी शौकत ऐसी आपने मुझे ज्वाइन करते रहना ओनली ओनली ऑन संडे। दिल की बात, खुशी की बात, हर बात क्या होती है, आओ बात करने में रहते हैं आप और मेरे साथ पूरे दो घंटे के लिए। तो ऐसे ही हर बार में भी आपका मैं इंतजार किया करूंगी, ऐसे ही आपने मुझे ज्वाइन करते रहना है। और इसके अलावा जो मैंने सॉन्ग का नाम पूछा था मसरूर अहमद ने मुझे जवाब दिया है सॉन्ग का, वो कहते हैं कि जी शमन अली मिराली की आवाज में आप मुझे सॉन्ग प्ले कर दे, दिल हुई सच्ची। ओके जी, जरूर हम लोग आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे अगर आपको जवाब ठीक है तो। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी, चलिए यहाँ पर एक और मेरे पास सॉन्ग है, तो क्यों ना मैं वो सॉन्ग प्ले करती हूँ और सुनते हैं। अच्छा ये तो सॉन्ग है, ये है नसीबोलाल की आवाज़, ये मेरी पसंद का सॉन्ग है और इतना मैंने कभी नहीं है, लेकिन मैं आपको पता है कोई भी न्यू सॉन्ग होता है तो हमेशा आपके साथ सुनती हूँ और इंजॉय भी आपके साथ ही आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम प्ले करते हैं और सुनते हैं सॉन्ग को।

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग नसीबोलाल की आवाज में था यार। तो जी यकीनन आप लोगों ने भी सुना होगा और यकीनन आप लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा अगर आपको उसका मतलब पता है तो, क्योंकि मैं आपको पता है कि अगर ये जो है अगर मैं कोई भी सॉन्ग सुनती तो आप लोगों के साथ सुनती, कोई भी ऐसा सॉन्ग नहीं है जो आप लोगों के बिना मैंने सुना हो। कोई भी फर्स्ट टाइम ऐसा सॉन्ग होता है तो हमेशा आप लोगों के लिए ही आप लोगों के साथ ही मैं सुना करती हूँ। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अभी जो है अभी हमें किसने जवाब दिया है। अच्छा अब्दुल रजाक हमें कहते हैं कि सवाल का जवाब है सॉन्ग फौजिया साइज फिंगर। अच्छा सवाल का जवाब है। और फौजिया सुमरो तो की वसर लाए जानी मुखे जमानो इन्या लगन दो। अच्छा कहते हैं फौजिया सुमरो का ये सॉन्ग आप प्ले करते हैं। जी जरूर। और आपने जो मुझे जवाब दिया है वो कहते हैं कि आपके हाथ के जो उंगलियां होती है उसके बराबर आपके नोज का साइज होता है। ओके जी ठीक है, आपका सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर टाइम अभी थोड़ी देर में ही हमारे पास होगा छोटा सा शॉक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आएंगे फौरन से, जैसे जाते हैं वैसे ही वापस आ जाते हैं। अच्छा जी और लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों के जो जवाब हैं वो मिलते जुलते हैं किसी किसी के, लेकिन बिल्कुल मैच भी नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके टाइमली हम लोग यहाँ पर सॉन्ग प्ले कर सके, तो जरूर जरूर करेंगे हम लोग आप लोगों के सॉन्ग प्लीज। और इसके अलावा जिसने मेरे साथ तो शो को ज्वाइन कर लिया है और मेरे पेज को अभी तक लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया तो जाके पहले से जाके कमेंट करें, शेयर करें और मुझे बताएंगे मैं सत्कर्म करने मौजूद ही। अच्छा जिसने मेरा सवाल नहीं सुना और सवाल मेरा यही है कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया, सवाल मैं आपको रिपीट कर दूं कि सवाल मेरा ये कि आप लोगों ने बताना है कि जो हमारी नाक है, जो हमारी नोज है, उसका साइज हमारी बॉडी के पार्ट के मतलब हमारे जिस्म के कौन से हिस्से के बराबर होता है। जाके आपने जल्दी से बताना है मुझे ताकि मैं आपके पसंद का सॉन्ग प्ले कर सकूं, ताकि आप भी सुने और आपके साथ मैं भी सुने, मेरे साथ सारे लिस्नर सारे मिलकर सुन लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉन्ग को भी सारे लोग एंजॉय करें तो जाके जल्दी से जवाब दीजिए और अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम भी साथ में टाइप करके बताइए मुझे। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी प्ले क्योंकि टाइम वैसे ही है हमारे पास, सिर्फ आधा घंटा रहता है।

तो जैसे कि अगर मेरे सवाल को सुन लिया होगा और जवाब भी आप लोगों के पास आ गया होगा, तो यहाँ पर चाहूंगी आप लोगों जो रेडी है, लेकिन अभी हम जाएंगे छोटे से छोटे कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और जैसे ही ब्रेक से जाएंगे वापस आएंगे, वापस आके करूंगी मैं आपके सॉन्ग को प्ले, और तब तक आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे देना है, और चाय शायद कब उठाना है और पीना है, मुझे भी साथ में बताना है कि आप लोग चाय भी पी रहे हैं, कार भी चला रहे हैं।

इसमें मौजूद जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की अफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले

0: GA Soccer FM 88.
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: ये भी तो जुर्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम।
3: आप लोगों को अपनी बात बताना, अपने दिल की बात बताना, ये चीज अच्छी लगती है यार। पहले की तो बस वैसे ठीक ना हो, अगर मुझे बात कर किसी से शेयर करे तो वैसे ही आधा मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी और आज ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया और मैंने जिस तरीके से मैं आप लोगों का वेट कर रही होती हूँ ऐसे आप लोग भी मेरा वेट कर रहे होते हैं। और उम्मीद यही है कि लिस्ट इतवार भी मेरे आने से पहले आप लोग मेरा इंतजार करेंगे और मेरे साथ मजहब का सॉन्ग सुनेंगे, मेरा मजहब का सवाल भी सुन के उसका जवाब भी देंगे अपने पसंदीदा सॉन्ग के नाम के साथ। और ज्वाइन करने के लिए तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो आपने ज्वाइन करने के लिए अपना नंबर लिख लेना है 8881 पे। आप इसके आर लिख के आप मुझे अपने नाम के साथ प्यार से शेयर के नाम के साथ मुझे SMS कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों का वेट कर रही होती हूँ, आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है यार कि मेरा यहाँ पर आना जो है ना वो पूरा हो जाता है, एक अधूरापन नहीं होता कि यार मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोग मेरे साथ मौजूद नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ी खुशी की बात होती है मेरे लिए। तो आप लोगों के साथ भी यही होता होगा कि आपको इतने प्यार से आरजे की आवाज सुनने को मिलती है, आरजे आपसे बात कर रही होती है और आओ बात करने में जो हम लोग साथ होते हैं पूरे 2 घंटे की। यहाँ पर टाइम होता है हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम, तो यहाँ पर लास्ट में मैं एक सॉन्ग को लेकर जाऊंगी, मेरी जिंदगी है तू, तो कौन है आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी है तू, तो ये सॉन्ग मैं करती जाऊंगी प्ले और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपकी जिंदगी कौन है। ओके, और यहाँ पर रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल क्योंकि यहाँ पर टाइम होता है बिल्कुल हमारा खत्म, तो बाय बाय करने वाला टाइम आ चुका है। ओके जी, तो यहाँ पर कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले और ये सॉन्ग भी साथ में प्ले होता ही जाएगा, तो क्यों ना हम लोग दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा मौजूद रहते हैं, आप लोग मेरी दुआ करिएगा कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए और प्लीज प्लीज प्लीज आप लोग जरूर दुआ करिएगा कि जो मेरी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, मेरी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए और जिस वजह से वो खराब हुई हुई है वो मेरा काम पूरा हो जाए और मेरी टेंशन खत्म हो जाए, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो ऐसे ही अगले दुआ और सॉन्ग को एंजॉय करेंगे साथ में सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़।

NICH इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो खिदमतूं फिम्स हवाले डेपुटेशन से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिम्स मुकर्रर ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रजा हेड ऑफ गायनी वार्ड डॉक्टर नौशीला अमजद डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर ताहिरा शाह सीनियर रजिस्ट्रार गायनी वार्ड निगार नवाज एसोसिएट प्रोफेसर पीडा डॉक्टर सादिया रिजिया असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान के मुअतल चार्ज नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया के फौरी तौर से पिम्स के एडमिन पोल में रिपोर्ट करण की हिदायतों डॉक्टर नुजत यासमीन पिम्स के चिल्ड्रन वेलफेयर के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तौर मुकर्रर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चार्ज दिनी वही डॉक्टर शुमैला हेड ऑफ गायनी वार्ड मुकर्रर पाकिस्तान तुर्की सऊदी गडियल सलामती दिफा लाए मुतहद आन वजीर आजम शहबाज शरीफ जो तुर्की के सदर अवाम के योम फतह के मौके से पैगाम वजीर आजम शहबाज शरीफ चय तो 30 अगस्त गाजी मुस्तफा कमाल तुर्क की क्यादत में तारीखी फतह की याद दियारे तो पाकिस्तान तुर्की अवाम से गड जुरत कौमी इज्जत के फख्र जो मीरास से हेठा पेश क्यूं था।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उमरा पहुची वो ज़रियन जो चवण है तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात कई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल से गालियां थी।

धुकीअ में गाॾी बारूदी सुरंग मां टकराइजी वई, टे भाइर फौत, हिकु ज़ख़्मी। SSP जो चवण आहे त धुकी जे इलाइक़े लूनकली बख्तियार में गाॾी बारूदी सुरंग सां टकराइजण सबबि टे भाइर फौत थी विया, जॾहिं त हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। इतलाह ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो आहे। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाश नामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघिजे थो। मुआदे ते अमल करण सां अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघिजे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दबाउ सबबि झुकंदो, कंहिं बि जारियत जो पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाक़ाई मामलनि ऐं इंतिज़ामनि सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजे सलाहियतनि ते भाड़ण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी मुस्लिम मुल्कनि विच में सहकार ऐं ख़्वाह जे बुनियाद ते थियणु घुर्जे। इफ्तिखार गिलानीअ खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सना लाइ चयो त इफ्तिखार गिलानीअ खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न आहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूरु हो, पर पार्टी क़यादत इन मामले में कंहिं सां नाइंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कम कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो। लाश ज़रूरी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले। मुक़ाबले में ॿ ॾुहारी मारण जी दावा। पुलिस मूजिबि रहीम यार खान जे खानपुर में काइनात बीबीअ जे क़तल केस में नामज़द जवाबदारनि जी मौजूदगीअ जे इतलाह ते छापो आयो त जवाबदारनि फायरिंग कई। पुलिस जी जवाबी फायरिंग सबबि जवाबदार हसनैन अला ॾिठो जमाली मारिजी विया। मटियारी भरिसां क़ौमी शाहराह ते ट्रक ऐं ट्रालर जे टकर में ॿ ॼणा फौत, चार ॼणा ज़ख़्मी। हादसे जे नतीजे में सजाद अली समेत ॿ ॼणा फौत थी विया। दिल मुराद मोहम्मद अब्बास समेत चार ॼणा ज़ख़्मी। फौतियुनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। अठहठ मोरीअ में आबाद घरनि जो वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज छोटकी विया। जे आबादगारनि वाटर कोर्स बंदि करण ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। आबादगारनि चयो त आबपाशी ख़ातिर रिश्वत न ॾियण तां वाटर कोर्स बंदि करे छॾियो आहे। 4 लख रुपया रिश्वत

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा प्यारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो प्यारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। हीउ पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे हीउ बूस्टर इज़ाफ़ी खुराक लगाना लाज़मी आहे।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
4: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

बिल्कुल जनाब, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होंगी, प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट होगा और उसके अलावा आप लोगों को सुनाए जाएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने भी। तो जनाब कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का डोज रेडी किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे और किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं तो सबको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। जैसे लिसनर्स ऑलवेज एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फिंटैक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर जो आरजे एंड या डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में आप खूबसूरत लोगों से वेलकम कहा जाता है। और जल्दी से बताइए जरा अपनी हाल चाल स्टूडियो लिसनर्स अंत की हालत है, कैसे ही आपकी हालत है? उम्मीद अन शदीद अन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक। यानी कि हम 2 घंटे लगातार आप लोगों के साथ बातें करेंगे और मजे करेंगे। तो चलिए जनाब रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में मजे करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वही वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करेगी भाईजान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं यहाँ पर ऐसा कर प्रोग्राम करते हैं जी। एक बहुत ही खूबसूरत सी GFM 88 नेटवर्क प्रोग्राम चलती का नाम बस्ती।

जी क्या बात है, मतलब क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम अस्सी, आके सिद्रा के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, और जरा आपने होने का एहसास दिलाएंगे, आप जिंदा मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जरा आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है उसकी जाने भी आ जाते हैं, क्योंकि टॉपिक प्रोग्राम में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आज के सवाल की बात की जाए, तो मेरा आज से जो सवाल होगा प्रोग्राम में आप लोगों से पूछने के लिए, वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप मुझे बताइए जरा, आजकल मेरा दिल कर रहा है कि इंसानों की फितरत के बारे में आप लोगों से जरा सवाल पूछूं, ताकि आप लोग भी जरा मुझे सही सही जवाब बताएं और मैं सही सही जान सकूं कि वाकई जो मेरे दिमाग में थॉट्स हैं, जो ये थोड़ी सी चीजें मतलब दिमाग में ऐसे घूमती रहती है ना, तो उनका जो सही हल है वो क्या हो सकता है। इसी के साथ साथ ये एक सवाल मेरे जहन में आ चुका था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ ही लेते हैं, ताकि मुझे पता चले कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो सवाल कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जब कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता या सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं। ओके जी, सवाल कुछ यूं है कि आपने मुझे बताना है कि एक इंसान जब कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बताएं जरा क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता या बस ये कहने की बातें होती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो ऐसे कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़ना

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है पर हार जाती है।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज अ पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88.8 पर। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलती गना मस्ती। और यहाँ पर आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है मेरे

बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्तिया की सिद्धराव के साथ मौजूद है। ओके जी, फर्ज करें अगर ऐसा हो जाए आप एटीएम से पैसे निकालने जाएं, 1000 निकालने पर आपको 2000 मिले और अगर आप 2000 निकालें तो आपको 4000 मिले, अगर ऐसा वाला सीन बन जाए तो सोच रहे हैं क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। मिस्र के एक शहर में रहने वाले एक इंसान ने अपने एटीएम से, यानी करीबी उसके एक एटीएम था, वहां वो गया और उसने 1000

मैं नलीजी आवाज में डेडिकेट यू मी रियली ओके थैंक यू. अच्छा उनके अलावा हमारे साथ कश्मीर से जुबैदा बलोच. हाय सिद्रा, हाय भाभी, कहती हैं प्लीज प्ले दिलदार मेडा शोना और डेडिकेट आपके हस्बैंड यानी कि अखलाक भाई को जाता है. तो आइए जरा ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, वरना भाभी बोलेगी हाँ सिद्रा मुझे गानों हलाए तो गाल याद अच्छी हो गाना तो बोले नहीं कौन. सो चलो गानों बदूंगा.

यस यू वेरी चालाक भाभी. ओके जी, बहुत ही अच्छा गाना जो कि हमने एंजॉय किया. एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि शमन मिराली की आवाज में होने वाला है. इस गाने की फरमाइश हमें किसने करी है बताते हैं जी. हमारे साथ ही गोठ मोहम्मद तैयब थे, वो कहा हबीबुल्ला थे, वो भाई कहते हैं सॉन्ग गुजराए जो. ओके ही वारो गानो तमाम भाग के डेडिकेट आए. सो तमाम से अगर मौजूद आए ताकि चौदह भली करी आया गाना एंजॉय कर.

0: टॉपिक को फॉलो करते जा रहे हैं। मेरे यहाँ आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जब कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो क्या वाकई उसे फर्क नहीं पड़ता या बस ये कहने की बातें होती है। और हमारे साथ ही चाचा खालिद कहते हैं बेटा से दो बहुत फर्क पड़ता है, आप मुझसे रूठ जाओ तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। ये सब कहने की बातें है। इंसान ऊपर और ऊपर से कहता है अंदर से टूट जाता है। ये टॉपिक आंसर क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और कश्मीर से अखलाक भाई लिखते हैं कि आंसर फर्क कैसे नहीं पड़ता, अंदर में बाय लगी वेंदो आहे वरी चवंदो आ मुखे फर्क कोई ना ही पड़ता फर्क पड़ता है। चले जी सुठी गाल, फर्क पवे तो बेहतर आहे ना। और फहीम भाई लिखते हैं कि दादा टॉपिक जब हम कहते हैं फर्क नहीं पड़ता तो मतलब नहीं पड़ता, अरे भाई ना करे। मतलब वो इंसान है जो कहते हैं वो बस मतलब वही है उनके लिए जो उन्होंने कह दिया। अच्छा ये हमारे साथ ही फ्रॉम मोरो खान गुलाम सरवर बाजी सलाम तवां के तवां जी पूरी टीम के डेडिकेशन भूरो खान लाखो एजाज अमानुल्ला विस्तरो जिनारे। ओके जी भाव जो मोहब्बत आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया तव्हां खे चवंदा भली करे आया प्रोग्राम में तव्हांजो सॼो साथ पूरे टे बजे ताईं हूंदो ऐं तव्हां असांखे ज्वाइन कंदा वञो पिया ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो ऐं मूंखे ॿुधायो तव्हां किथां खां असांखे ज्वाइन कयो आहे ऐं अलाए ॿियो छा बसि हाणे हिते टाइम थियो आहे न्यूज़ ब्रेक वठूं था उन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा वापसी जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं तव्हां काॾे न वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग जीएफएम 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं जल्दी करना मस्ती।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: brought to you by
7: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।
8: जी इंडियन लाइफ मोतल इन NICH इस्लामाबाद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद सलमान जो खिदमत पिम्स हवाले डेपुटेशन ते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स मुकरर। ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चौधरी वारिस अली रजा ए हेड ऑफ गायनी डॉक्टर नौशीला अमजद, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मुतायर शाह ऐं सीनियर रजिस्ट्रार गानी डॉक्टर निगार नवाज, एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर सरदार रज़िया ऐं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान बि मोतल। चार्ज नर्स नसरीन लेडी सिक्योरिटी स्टाफ मारिया खे फौरी तौर ते पिम्स जे एडमिन पोल में रिपोर्ट करण जूं हिदायतूं। डॉक्टर नुज़रत यासमिन पिम्स जे चिल्ड्रन वालड्रेन जे चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुक़ररु। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन खे ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी चार्ज ॾिनी वई। डॉक्टर शुमाइला हेड ऑफ गायनी मुक़ररु।

तुर्की ऐं सऊदी गॾियल सलामती ऐं दिफ़ा लाइ मुतहद आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तुर्की जे सदर ऐं अवाम खे योम फतह जे मौक़े ते पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त 30 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल तुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख्र जोगी मीरास खे भेटा पेश कयूं था। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जाती उमराह पहुची वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई। मुलाक़ात में मुल्क जे सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। दुकीअ में गाॾी बारूदी सिंक सां टकराइजी वई, टिन भाइरनि समेत हिकु ॼणो ज़ख़्मी। SSP जो चवण आहे त दुकी जे इलाइक़े लूनी कलर बख़्तियार में गाॾी बारूदी सिरिंग सां टकराइजण सबबि 3 भाइर फोत थी विया, 1 ज़ख़्मी थी पियो। इतलाह ते पुलिस इलाइक़े खे घेरे में आणे छॾियो, सर्च ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। ईरानी सदर चयो आहे त इस्लामाबाद यादाशनामे ते अमल दरामद सां ॾुखियाइनि ते कंट्रोल करे सघे थो, मुआदे ते अमल करणु आसान। अमरीका ऐं इसराइल खे खिते में अदम इस्तेहकाम पैदा करण सां रोके सघे थो। ईरान जंग नथो चाहे, नई धमकियुनि ऐं दबाउ सभु झुकंदो, कंहिं बि जारियत जे पूरी ताक़त सां जवाब ॾींदासीं। आलमी बिरादरी खिते में शिकतान घटाइण में किरदार अदा करे। नवनि इलाक़ाई मुआहिदनि ऐं इंतज़ाम सां पाड़ेसरी मुस्लिम मुल्कनि जो पंहिंजी सलाहियतुनि ते भाण जी शुरूआत थी चुकी आहे। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाब चयो आहे त इलाक़ाई सिक्योरिटी विच में सहकार ऐं ख़्वाहिशनि जे बुनियाद ते थियणु घुर्जे। मुस्लिम पाड़ेसरीन खे दुश्मन बदिरां सहकार ऐं भाईचारो इख़्तियार करणु घुर्जे। इफ्तिखार गीलानी खे आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म बणाइण पार्टी क़यादत ऐं नवाज़ शरीफ़ जो फ़ैसिलो। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाल चयो त इफ्तिखार गीलानी खे वज़ीर आज़म बणाइण में कंहिं सां नाइंसाफ़ी नाहे थी। आज़ाद कश्मीर जो वज़ीर आज़म चूंडण पार्टीअ लाइ ॾुखियो फ़ैसिलो ज़रूर हो, पर पार्टी मामले इंसाफ़ी न कई आहे। उॿावड़ो भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग में नौजवान क़तल। ॻोठ लांगो में हथियारबंदनि फायरिंग करे ॿनीअ ते कमु कंदड़ लियाकत मल खे क़तल करे छॾियो, लाश ज़रूरी कार्यवाही बदवार सां हवाले।

मारी मारण की दवा पुलिस मूजिब रहीम यार खान के खानपुर में कायनात बीबी के कतल केस में नामजद जवाबदार की मौजूदगी के इतलात छापो आयो तो जवाबदार फायरिंग कई पुलिस की जवाबी फायरिंग सबब जवाबदार हसनैन अला डितो जमाली मार वाया। मटियारी भरसा कौमी शाहराह से ट्रक और ट्रालर की टक्कर में बजना फोत चार जना जख्मी हादसे के नतीजे में सजाद अली समेत बजना फोत थी वह दिल मुराद मोहम्मद अब्बास समेत चार जना सख्त जख्मी थी वह फोत ने जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कर गुजरन वाटर कोर्स।

0: तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, सिंध जो आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

करे हर पल हसीन सिर्फ क्रीम। सिंह की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से। बिल्कुल जी आगे सदराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास लाते जा रहे हैं। और इसके अलावा हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। उनके अलावा आज मामा का सवाल पूछो है, सवाल यो पूछो है जिन माण्डन के बुधायण था जिन माण्डन हाणी हाणी असा के ज्वाइन किया है तो सवाल कुछ ये है तमा के मुख्य बुधायणो है जेके मानो ये चवना है तो असा के कोई फर्क नथो पवे तो अच्छा बाकी उन्हें फर्क ना है पवन या बस मड़े ये गाल हूं जी अगलो मानू सिर्फ चई बुधाई है छो तो कुछ मानू बाकी हूं जी सिर्फ गाल

क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हम एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है ना ये ना गाने में करो लफ्ज जो मुख्य थोड़ो ये लगी हुआ है कल यह चीज दादी आम जाम नजर अचे पी। एक्ट्रेस है ना लाइबा खान जिनकी थोड़ा टाइम पे शादी थी, वैसे तो मतलब उनके थोड़ा मानू घट सुणी पर शादी का डो लाइम लाइन भी अची वही हर को मानू सुण लगो। शादी का फौरन कुछ टाइम का बाद में ना उन्हें पोस्ट लगाई, मतलब स्टेटस अपलोड करो पांजो उन्हें लिखो हो तो सारी दुनिया मुख्य पसंद कन्दी आ है पर वो मानो मुख्य पसंद न तो करे जैसे मां पसंद कन्दी आ है। तो यो एकड़ो यूनिवर्सल प्रॉब्लम आ है, चाहे तमा के सारी दुनिया पसंद करे ता सारी दुनिया

0: सॉन्ग्स भी तव्हांखे ॾाढी सुठी वाइब ॾेई वेंदा आहिनि.
1: बिल्कुल जी,
0: ॾाढो भलो गानो जेको असां इंजॉय कयूं था प्रोग्राम में तव्हां सां सगर मौजूद आहे. और ये हमारे साथ ही चाचा खालिद, अगर ऐसा हो जाता तो ये भी चीज एक नोटिस करने वाली है ना कि भाई आके बैंक अकाउंट में इतने पैसे भी तो होने चाहिए ना. हाँ, ये भी सोचिए जरा, अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए जो निकलवाएंगे. और कहते हैं आपका भी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम मैंने बोल दिया पहले ही. और कहते हैं ये सॉन्ग बहुत पुराना गाना है, उसकी कट है. हाँ बिल्कुल जी, पुराना गाना. आज मैंने सोचा पुराने पुराने गाने आपको सुनाते हैं. और कश्मीर से इखलाक भाई कहते हैं एफ एम टी रच छो घटा बैलेंस को नहीं मारन वेट लगे ये तो बिल्कुल. या न अॼुकल्ह महांगाई ॾाढी थी वई आहे, सो माण्हू चवनि था बाबा बसि प्रोग्राम ॿुधूं था वरी मैसेज कंदासीं त इलाही पैसा ख़र्च थी वेंदा.

0: brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम
2: की कमी का शिकार है, इसीलिए सोन 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में 3 अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं. मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे. त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी वॾी नियामत आहिनि. ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे. असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे. ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी. 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे.
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो.

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: अक्सर मान जो सवाल हों असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज
6: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ओके okay, जी नसीब भला थींदा बिल्कुल जी भले नसीब जी दुआ के न कयो छो त नसीब भला त पोए सब कुछ सुठो ही थींदो तव्हांजी ज़िंदगी में और इन खां अलावा मूं इहा चीज़ नोटिस कई आहे ज्यादातर छोकिरियुनि खे इहा दुआ ॾिनी वेंदी आहे अलाह सां नसीब भला कंदसि इहा सुठी ॻाल्हि आहे भली ॻाल्हि आहे छोकिरियुनि खे इहा दुआ मिलणु घुर्जे पर अॼुकल्ह दौर अहिड़ो हले थो त छोकिरियुनि खे बि इहा दुआ ॾियणु घुर्जे मूंखे ई लॻंदो आहे सो इहा दुआ अगरि तव्हां ॾियो त तव्हांजे ज़हन में इहो न हुजे त सिर्फ़ इहा दुआ जेका छोकिरियुनि जे लाइ आहे भई इहा दुआ जेका आहे न उहा ॿिन्हिनि जे लाइ छोकिरा छोकिरियूं सभिनी खे तव्हां इहा दुआ ॾेई सघो था ऐं ॾियो बहितर आहे छो त दुआ ॾींदा कयो जॾहिं तव्हां कंहिं ॿिए जे लाइ दुआ कंदा त उहा दुआ चवंदा आहिनि सभ खां पहिरियों तव्हांजी हक़ में क़बूल थी वेंदी आहे सो बिल्कुलु इहो सिलसिलो जेको आहे सो कॾहिं बि स्टॉप न कंदा कयो दुआ में हमेशह यादि रखंदा कयो उन्हनि सभिनी प्यारनि माण्हुनि खे जेके तव्हांजी ज़िंदगी में शायदि थोरी वैल्यू रखनि था थोरी अहमियत रखनि था ओके जी सो ही वारो गानो ख़तम थी चुको आहे ॿियो गानो असांजे लिस्ट में मौजूदु आहे जेको असां ॿुधंदासीं तमामु ख़ूबसूरत ट्रेक आहे ऐं अॼु जी प्लेलिस्ट मूंखे लॻे थो ॾाढी भली हुई छो त हिन में कुझु तव्हांजी पसंदि जा गाना कुझु वरी असांजी पसंदि जा गाना मिली करे तमामु ख़ूबसूरत प्लेलिस्ट जेका आहे उहा तयारु थी चुकी आहे अॼु जे प्रोग्राम जी ऐं ज़ामिन अली जी आवाज़ में इंतिहाई ख़ूबसूरत ट्रेक आहे जंहिंजी फरमाइश असांखे असांजे प्यारे भाउ फ़हीम शेख करे छॾी ऐं हीउ गानो डेडिकेट मूंखे वञे थो लेट्स एंजॉय

आने जाने वाली चीज होती है. यू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी बेटा, इट्स नोटेड. ओके चाचा, ओके थैंक यू. और हैं जी हमारे साथ मोरो खान गुलाम सरवर बाजी, प्लीज प्ले मैडम नूर जहां, डेडिकेट भूरो खान लाखो एजाज अमानुल्ला विस्तरो. अच्छा बिल्कुल भाई, आपका गाना मुझे याद था, लेकिन थोड़ी सी जो प्ले लिस्ट है ना वो इजाजत नहीं दे रही थी इस गाने की. वैसे अगर आप मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो आपका ये गाना हम लगा लेंगे. ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं.

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: से सजी सिंध की आवाज
1: उमेर रज मोहब्बत का एफएम की आवाज
0: डीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो
0: जिस घर है कलंदर आवाज
1: उसी खिते की बनी है आवाज
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है अगर आपका बच्चा 10 साल से कम

0: उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज वो पोलियो से होंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते 88 नेटवर्क ते
2: फायदा पहुँचे जिसे हो पैदावार नाफा तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
3: संगीत जो आवाज 91.1 सिंध जो आवाज
4: जिस धरती से जुड़ते
1: की बनी है आवाज
4: जीए वर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी
1: लाल शहबाज
2: उसी खत्ते की बनी है आवाज
1: डीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: 진짜 좋아 맞. 진짜 좋아. 나라고.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिते की बनी है आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular, mittiye jo maan vadhai।
4: Aap sun rahe
7: jang to maidan padyal police vakte ke sikyurity control cut mein nakam police vakte te pahunchan sabab vadhik jaani nuksan thyo koth danu chandyo mein durian vich mein firing sabab patpar chandyo durja manzoor sultan watni bachchan hajan ai fida chandyo qatl खान मोहम्मद चांडो दुर्जा वफायर दीदार ऐं गुलबहार चांडो मारिजी विया। अठ चवण आहे त पुलिस वाकिए वारे हंधि न पहुती, परे खां ॻोठ खे कड़ो चाढ़ियो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जो आवाज की आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बदलता रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खिते की बनी है आवाज
3: जीए एफएम नेटवर्क
4: की आवाज।
5: अक्सर वालदेन जो यो चवण होंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पियारियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे, त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

अहमदाबाद में घूमकर नौजवान अंतिबाजा बिलासपुर सोसायटी की रैली ताज जो सरीन दरबार पुष्पा कुमारी ए फताह चना जाशरे अगवान चयो त गुम थियण जे वाकियन में वाद सबब अवाम में बेचैनी खौफ वधी रहियो आहे मुख्तल लोकनि खे फौरी तौर बाज़ियाब करायो सतरहें मास्तरी लाइ आई पी ए टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो ऑफर आर्डर तकड़े ख़िलाफ़ एहतजाज पी एस टी ऐं जी एस टी टेस्ट पास कंदड़ उमेदवारनि जो चवण आहे त टेस्ट पास कंदे 5 साल थी विया आहिनि पर ईअं ताईं ऑफर आर्डर न पिया ॾिना वञनि ऑफर आर्डर जारी करे परेशानी ख़तम कई वञे पेशावर खां कोयटा वेंदड़ जाफर एक्सप्रेस स्टेशन ते रोकियो वियो सिक्योरिटी क्लीयरेंस न हुअण सबबि रेलगाड़ी खे बलोचिस्तान न छॾियो वियो रेलवे स्टेशन ते सहूलियतूं न हुअण सबबि मुसाफ़िरनि खे सख़्तु रुकायूं जाफर एक्सप्रेस खे रोकण बाद मुसाफ़िर कोचेस ऐं वेगननि ज़रिए कोयटा रवाना थी विया मुसाफ़िरनि खे जंगाबाद खां कोयटा जो किरायो वापसि कयो वियो

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज़,
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद एफएम 91.6 सिंध
1: धरती से जलंधर लाल शहबाज,
2: ये आवाज
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज़, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज,
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
7: कमेटी जो इजलास सुभाणे इस्तांबुल में थींदो। तुर्क परे ऑफिस जे ज़रिए मौजूद इजलास में टिनी मुल्कनि जूं आला अख़्तियारूं शिरकत कंदियूं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि इस्तांबुल पहुची वियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ तुर्किया जे सदर ऐं अवाम खे योम फताह जे मौके ते पैगाम ॾींदे चयो त पाकिस्तान ऐं तुर्किया जी स्ट्रेटेजिक भाईवारी गॾियल खुशहाली ऐं सिक्योरिटी जी ज़मीन आहे। पके वाइदे स्ट्रेटेजिक भाईचारे तसदीक कई कि वाइदो पाकिस्तान ऐं तुर्किया खे सऊदी अरब सां गॾु मज़बूती सां जोड़े थो। 3 अगस्त गाज़ी मुस्तफ़ा कमाल अता तुर्क जी क़यादत में तारीख़ी फतह जी यादि ॾियारे थो। पाकिस्तान तुर्की अवाम सां गॾु जुरत ऐं क़ौमी अज़म जे फ़ख़्र जोगी मीरास खे भेटा पेश करे थो।

0: जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: रेटिना यानी अखिन जो पर्दो
1: स्काई स्पोर्ट्स ने जो इंटरव्यू नशर किए या नशर किया इमरान खान के दोनों साहबजादों का पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम और फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान के, उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है क्योंकि वो टीवी पे भी ऑन एयर किया गया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी ऑन एयर किया गया, जो कि जिसपे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज भी किया। और एक मौके पर पाकिस्तान की टीम ये भी सोच रही थी कि टीम जो है वो ग्राउंड में न जाए। अच्छा, इंग्लैंड के दौरों पर इंसिडेंट और एक्सीडेंटल वाकयात बहुत हुए हैं। 2006 का ओवल टेस्ट तो आपको याद होगा जब इंजमाम टीम लेकर नहीं गए थे, जब डेरल हेयर ने कहा था कि बॉल टेम्परिंग कर रही है पाकिस्तान की टीम, जबकि पाकिस्तान की टीम ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, बॉल की शेप बिगड़ गई थी। इंजमाम उल हक जो है वो टीम लेकर नहीं गए थे फील्ड पे, पहले वो टेस्ट मैच इंग्लैंड को अवार्ड किया गया, फिर पाकिस्तान को अवार्ड किया गया और एक बार फिर इंग्लैंड को अवार्ड कर दिया गया। तो उस टेस्ट मैच को लेकर बहुत सारे जो थे वो मामला हुए और बहुत सारे नतीजे जो थे वो निकले और बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत कुछ हुआ। इससे पहले फैसलाबाद में माइक गेटिंग का और शकूर राणा का मामला आप सब जानते हैं, 87-89 में जब इंग्लैंड ने हमारा टूर किया था, अब बहुत कुछ हुआ था वहां भी। स्टुअर्ट ब्रॉड के फादर के स्पॉट माइक गेटिंग में उन्होंने बहुत कुछ किया था और बड़े इंसिडेंट्स हैं। और यहाँ जो है जाहिर है वो बात तो एक ठीक है, चले इमरान खान इज अ क्रिकेटिंग लेजेंड, उसमें कोई शक नहीं है, और माइकल एथरटन या किसी भी कैप्टन का अपील करना गवर्नमेंट दैट डज मेक सेंस, मगर मेरा ख्याल है कि लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम से या लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम से इंटरव्यू करना इमरान खान के साथ, शायद इस दौरान क्रिकेट मैच, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान का एतराज बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो शायद ज्यादती की है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने या जिसे कहने स्काई स्पोर्ट्स के होस्ट ब्रॉडकास्टर्स हैं। उसको लेकर बहुत सारे लोगों के तबसरे, बहुत सारी बातें आ रही हैं, मगर मैं देखें अपना जेन्युइन थॉट या जेन्युइन मेरा ख्याल यही है कि मेरा ख्याल दौरान लाइव कवरेज आपको कोई भी पॉलिटिकल इशू नहीं लाना चाहिए। आई थिंक दैट शुड नॉट हैव बीन ब्रॉड इन एंड दैट आप किसी न्यूज चैनल पे तो ऐसा कर सकते हैं, किसी करंट अफेयर के प्रोग्राम में तो ऐसा कर सकते हैं, मगर दौरान लाइव टेलीकास्ट जबकि आप एक क्रिकेट मैच दिखा रहे हैं और आप एक स्पोर्ट्स चैनल हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करना और किसी खास चीज को पे एम्फसाइज करना, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं स्काई स्पोर्ट्स गॉट इट एब्सोल्युटली रॉन्ग, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली वेल विद इन देयर रीच, वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है जो भी कहा है, और कहीं ना कहीं इस चीज का जो है वो मैं समझता हूं कि नोटिस लेना भी चाहिए, जो कि लिया भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। बहरहाल अब आ जाते हैं लॉर्ड्स में जो मुकाबला खेला जा रहा है उसको, मुकाबले में जनाब इस वक्त लॉर्ड्स के मुकाम पर चौथा रोज है, चौथे रोज का नतीजा 300 खेला है, पाकिस्तान की टीम ने बनाए हैं 94 रन, पहले गिर गई थी। इस वक्त साउथ शकील अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं जो कि इंग्लैंड में उनकी पहली हाफ सेंचुरी है, और उनके साथ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शान मसूद जो कि 20 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम रहे, अजान अवैस एक बार फिर नाकाम रहे और अब्दुल्ला शफीक भी नाकाम रहे। पहला टेस्ट मैच लीड्स के मुकाम पर, इंग्लैंड जीतकर पहली सीरीज में 1-0 से आगे है, ये बात हो रही है इस वक्त दूसरे टेस्ट मैच की जिसका चौथा दिन है, और यहां भी अभी 295 रन पाकिस्तान को चाहिए, 7 विकेट पाकिस्तान के पास बाकी है, और इस वक्त लॉर्ड्स के मकाम पर बारिश जो है वो जारी है। अब मैं पूरे मैच का स्कोर कार्ड आपको बताता चलूं, इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए पहली अपनी इनिंग्स में जो है वो 290 रन स्कोर किए, जिसमें बेन डकेट को LBW किया मोहम्मद अब्बास ने, 17 रन बनाए थे उन्होंने 20 गेंदों पर, एंड स्ट्रक 3 बाउंड्रीज, एमिलियो गे को कैच लिया मोहम्मद रिजवान ने, मोहम्मद अब्बास अगेन बॉलर थे, 8 रन बनाए 17 गेंदों पे एंड स्ट्रक 2 बाउंड्रीज, जॉर्डन कॉक्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की, सलमान अली आगा ने इनका कैच किया, खुर्रम शहजाद की गेंद पे 55 रन बनाए 105 गेंदों पर स्ट्रक 7 बाउंड्रीज, जो रूट जो कि इंग्लैंड के एक बार फिर कैप्टन बनाए गए हैं

off-stump of Khadria on a beauty. That was one peach of a ball. And Abdullah Shafiq looked all but in trouble. जिन्होंने तीन गेंदें खेली कोई रन न बना सके. बाबर आजम की नाकामियों, बाबर आजम की महरूमियों, बाबर आजम के जवाल का सिलसिला तवील होता जा रहा है जहां तक इंटरनेशनल क्रिकेट का ताल्लुक है. मैं इंटरनेशनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएसएल वो बहुत अच्छे खेले हैं और अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेकंड टेस्ट में ही प्लेड रियली वेल. अगर यहां एक बार फिर नाकाम हुए. कॉट कॉक्स बोल्ड आर्चर 6 रन बनाए. पहली इनिंग्स में भी उनका कैच कॉक्स ने लिया था. 8 गेंदें खेले बाबर आजम, एक चौका लगाया, एक्स्ट्राज इन 9. मगर उसके बाद एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनी है अर्शद शकील और शान मसूद के दरमियान जो ताहाल जारी है. शान मसूद 21 रन पर नॉट आउट है, 61 गेंदें खेलकर दो चौके लगाए हैं, जबकि अर्शद शकील ने 57 रन किए हैं 74 गेंदों पर एंड स्ट्रक 10 बाउंड्रीज एंड इज लुकिंग इन ग्रेट टच एंड ग्रेट निक एंड दे हैव बीन 9 एक्स्ट्राज एज वेल एंड पाकिस्तान आर 99/3 करंटली. और इस तरह अभी भी जो है वो पाकिस्तान की टीम को 290 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए. ये है सुरतेल एंड पाकिस्तान हैव गॉट स्टिल गॉट 7 विकेट्स इन देयर हैंड्स. ये सुरतेल है मोहम्मद अब्बास ने, मैंने जिक्र कर दिया था इनकी बॉलिंग का. दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए रॉबिनसन अपना 8वां ओवर कर रहे हैं, 13 रन देकर 2 विकेट लिए. जॉफ्रे आर्चर ने 10 ओवर में 38 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया है. जॉश टंग 3 ओवर 16 रन एंड हैजंट टेकन अ विकेट, जबकि 4 ओवर किए गस एटकिंसन ने इवेंट फॉर 24 एंड डेन लॉरेंस ने 2 ओवरों में 2 रन दिए हैं और कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया है. दैट्स द लॉर्ड्स टेस्ट मैच रिपोर्ट. और लॉर्ड्स का मकाम हम जानते हैं, इसे क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है. लॉर्ड्स की एक अपनी वैल्यू है, लॉर्ड्स का एक अपना जो है वो रिदम है. और लॉर्ड्स के मुकाम पर पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता रहा है. पाकिस्तान 93 में भी जीता था यहाँ, 96 में भी जीता था, उसके अलावा भी टेस्ट मैचेस जीता रहा है. मगर अब पिछले कुछ अरसे से टीम की कारकर्दगी मैं समझता हूँ गोइंग बैक टू वर्ल्ड. नासिर हुसैन ने भी कहा और बहुत सारे दूसरे खिलाड़ियों ने भी, इंग्लैंड के और हमारे अपने खिलाड़ियों ने भी कहा कि ये पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीम है. पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के बारे में नासिर हुसैन ने कहा ये होता था कि वो बहुत अच्छे मैच है, उन्होंने कहा ये अब अच्छे मैच नहीं है. पाकिस्तान सीधा सीधा हार रहा है और पाकिस्तान की एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती थी कि आज अगर हारे हैं तो कल जीत सकते हैं, और बोल रहे हैं पाकिस्तान सीधा सीधा हार रहा है. तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम का वो वैनम, वो फाइट, उसकी वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उसका वो अंदाज कम बैक करने का फ्रॉम नोवेयर, आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा है. इन पर्टिकुलरली इन टेस्ट मैचेस टीम की कारकर्दगी बहुत खराब है. वो कौन है जिम्मेदार, क्या मामला है, क्यों हो रहा है ऐसा, इस पर बहुत सारी बात हो भी रही है, हो भी सकती है. हम अपने मुख्तलिफ जो हमारे मोर्च पर सहाफी हैं, कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी उनके मुख्तलिफ जो अकवाल हैं, उन्होंने जो मुख्तलिफ अपनी राय दी है क्रिकेट टीम के हवाले से, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे. साथ साथ इस वक्त एक बार फिर आपको बताते चलेंगे करंटली मैच गॉट अंडर वे रेन ब्रेक के बाद और 102 रन हो गए पाकिस्तान के 3 विकेट के नुकसान पर. दे आर नीडिंग अनदर 287 फॉर द विक्ट्री एंड दे हैव गॉट 7 विकेट्स इन डेप्थ. और इंग्लैंड का भी बेसबॉल का जमाना एक तरह से मुकम्मल हुआ जब बेन स्टोक्स ने टीम को छोड़ दिया है एंड जो रूट हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कैप्टन अगेन. And Joe Root is a fantastic cricketer. We all know he is a terrific batter. Record unka bahut acha hai, bahut shandar hai. Aur main samajhta hu ki waqt guzarne ke saath saath wo mazid England ke liye apni karkardagi bhi behtar karenge aur England ki team ki karkardagi bhi. Bahrhal main samajhta hu ki ye Pakistan ki wo team nahi jo team England ka daura isse pehle jaisi mazboot teamein karte rahi. To asal imtihan to bahrhal abhi Joe Root ka bhi aayega jab wo South Africa का दौरा करेगी या ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे या फिर इंडिया से जब खेलेंगे. हालांकि इंडिया की सूरत हाल भी होम सीरीज में भी न्यूजीलैंड से भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे, कोई आजकल बहुत अच्छी नहीं है. बट जो भी है इंडिया वर अ वेरी वेरी गुड साइड और इस वक्त स्कोर 107 पे जा पहुंचा है. पाकिस्तान के बैटर्स अपने स्ट्रोक्स लेने से नहीं चूक रहे हैं और खासतौर पर साउथ शकील इज डूइंग अ गुड जॉब और वो बहुत ही उमदगी के साथ इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, विच इज नाइस टू सी. और मैं समझता हूं कि साउथ की पर्टिकुलरली आर्चर को भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं. इट्स डूइंग इट.

परफेक्ट जॉब, और मैं समझता हूँ कि ये जरूरत भी थी कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से बैटिंग की जाए. साउथ गोज अप टू 62, 11 बाउंड्रीज ही हैज स्ट्रक सो फार, 76 बॉल्स ही हैज फेस्ड सो फार. शान मसूद नॉट आउट एंड 24 पे 65 गेंदों पे 2 चौके वो भी मार चुके हैं. दे ऑल आर डूइंग जॉब. प्रोग्राम में वायरल हम पहले ब्रेक की जाने पड़ चुके हैं. प्रोग्राम में इस वक्त आइए लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक. जब वापस लौटेंगे तो मजीद बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट मैच की भी, और मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस हवाले से उस पर भी बात करेंगे. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑन जीएएफएम रेडियो नेटवर्क.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी।

अरे दूसरा ये कि एक ऐसा ओपनर जो भी बिल्कुल नया है, उसको जोफ्रा आर्चर के सामने और रॉबिन्सन के और जोस्टन के सामने थ्रो करने वाली बात नहीं और टफ है। इसी तरह आप जब इंग्लैंड आए हैं जहाँ गेम पेस भी आपको चाहिए और आपको किसी में जानते हो, तो वहाँ नसीम चाहे कच्ची चॉइस हो सकते थे, उनको दौरे पे नहीं लाया गया और शाइन क्लाफी भी कुछ भी गुड चॉइस ठीक है, वो 22 आरिफ राउत पर वो भी नाकामी रहते हैं, मगर टेस्ट मैच में जाहिर है कि मैं समझता हूँ एटलीस्ट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन तो बनता है ना, तो उनको भी नहीं कराया गया, उनको भी नहीं लाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ है, ये नहीं कहता कि हम जीत ही जाते हैं, हम इंग्लैंड को वाइट वॉश कर देते, मगर शायद पहले टेस्ट इस तरह से ना हारते, ना वेस्ट इंडीज में, ना हेडिंगली लीड्स में, इंग्लैंड में। इसके अलावा आप देखें क्या कुछ नहीं हो रहा, आकिब जावेद आते हैं कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, गैरी क्रिस्टन भी एक तरह से टीम से गायब हो गए, और भी बहुत सारे लोग जो थे, तो आई मीन के कुछ कुछ कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। भले आप अपने आप को कितना भी तसल्ली दें, बट देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग रॉन्ग। अच्छा, बाबर आजम हैज बीन गिवन द कैप्टन लिस्ट के टूर पर, मैं ये थोड़ा हार्श है, बाबर आजम नंबर ऑफ टेन उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आएगी, मगर बाबर आजम को मैं समझ रहा हूँ शायद कैप्टनसी एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए, यानी वो स्ट्रेकन ऑफ द कैप्टनसी, फिर उन्हें जिस तरह से वर्ल्ड कप में टाइम ड्रॉप भी किया गया 2020 के वर्ल्ड कप में, उनका नंबर भी चेंज किया गया, एंड नाउ ही हैज बीन गिवन द कैप्टनसी बैक। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ा जिसे कहना चाहिए गमनाक चीज है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर मी, कि क्यों व्हाई डिड ही एक्सेप्ट द कैप्टनसी अगेन, और फिर जब और अगर आपने कैप्टनसी एक्सेप्ट की है तो मैं समझ फिर आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी गट्स होने चाहिए थे कि आप अपनी स्ट्रांगेस्ट साइड लेके जाते हैं, आप अपनी जो टीम आप चाहते थे, जो डिजर्विंग प्लेयर थे उनको लेके जाते। मेरा ख्याल है कि आकिब जावेद इज मेकिंग लॉट ऑफ बैड डिसीजन एज वेल, आई डोंट वॉन्ट टू बी वेरी क्रिटिसाइजिंग, मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला

नहीं, मैंने पहले भी बताया और आप मुझे जानते भी हैं, रेडियो कमेंट्री भी आप सुनते हैं, मेरी टीवी पे भी देखते होंगे और साथ साथ मुझे आप प्रोग्राम में भी इतने अच्छे से सुन रहे हैं। मैं कोई क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं हूँ, मगर यार मैं समझता हूँ अजान अवैस को किसी तरह लेके नहीं जाना चाहिए। जो हमारी पहली टीम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब लॉर्ड्स में 96 में जीते तो ओपनर सईद अनवर थे, अच्छी खासी सेंचुरियां बना चुके थे और तीसरे टेस्ट में ओवल में उन्होंने सेंचुरी बना भी डाली और लॉर्ड्स टेस्ट में इंजमाम ने सेंचुरी बनाई थी उस वक्त। तो उसके बाद अलावा 93 में भी हमारे पास अच्छे ओपनर आमिर सोहेल वगैरह मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अब ऐसी ओपनर नहीं चेन टू वॉट सी टाइम्स गेंद जो है बाकायदा स्विंग और सीम होती है और इंग्लैंड के तकरीबन वो बहुत अच्छे से जानता है कि गेंद को स्विंग और सीम किस तरह करना है, क्योंकि दे हैव नो स्टूवर्ट, दे हैव नो एंडरसन नाउ, मगर मैबिनसन ने और आर्चर ने उनके पेस अटैक को बहुत अच्छे अंदाज में संभाल लिया है। दे बोथ आर गुड बॉलर्स और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये इस चीज का ध्यान रखना होगा, इस चीज का ख्याल रखना होगा कि ऐसी अजान अवैस को शायद मेरे नजदीक नहीं लेके। आई होप 47 रन भी उन्होंने किए हैं, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनीथिंग अवे, लेकिन कभी कभार हो ये जाता है कि ज्यादती हो जाती है ऐसे खिलाड़ियों के साथ जिन्हें शायद अगर आप पाकिस्तान में किसी और टीम के खिलाफ किसी और कंडीशन में मौका देते तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो सकती है। ये मेरा कहने का मकसद, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहरहाल लेट्स गेट बैक टू द लॉर्ड्स और लॉर्ड्स में अभी मैं आपको सूरत हाल बता देता हूँ कि पाकिस्तान हैव मूव्ड अप टू 111 फॉर 4। ओहो, शान मसूद इज गॉन, आउट हो गए शान मसूद। माय गॉड, ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि मैं उनकी डिसमिसल आपको बता दूं कि हु गॉट इज वर्किंग। शान मसूद LBW बोल्ड रॉबिन्सन 26 रन बनाए 72 गेंदों पे, 2 चौके लगाए और नेल्सन पे विकेट गिर गई है जनाब 111 पे पाकिस्तान की चौथी। एंड अगेन पाकिस्तान नाउ इन डायर स्ट्रेट्स, अगेन पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल। अब अकेले साउथ शकील पे कुछ उम्मीद की जा सकती है या फिर आप देखते हैं मोहम्मद रिजवान जो बैटिंग करने के लिए आए, कैन ही प्ले अप बिग इनिंग्स हियर, क्या वो यहाँ कोई बड़ी इनिंग्स खेल सकते। इस बात इमामुल हक स्टिल कंफर्म नहीं है कि वो बैटिंग करने के लिए आ भी सकेंगे नहीं, क्या कंडीशंस है उनकी क्या नहीं, देन यू विल डाउन टू योर बॉलर्स। इसमें अली उस्मान का बहुत तजुर्बा नहीं बैटिंग का, खुर्रम शहजाद का भी नहीं, मोहम्मद अब्बास का भी नहीं, मोहम्मद अली का भी नहीं, एंड यू आर स्टिल नीडिंग 278 रन फॉर द विक्ट्री। तो अब तो मेरा ख्याल है कि कुछ मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान को। फाइनल लेट्स सी, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के जो भी सूरत हाल बनती है अगले प्रोग्राम के चंक में, अगले प्रोग्राम के हिस्से में भी जो कि आएगा इस ब्रेक के बाद, उसमें आपसे शेयर करेंगे। इस वक्त हम प्रोग्राम में दूसरे ब्रेक की जाने बढ़ गए हैं, आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, देन विल बी राइट बैक ऑन GAFM रेडियो नेटवर्क जहां पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप मेरे आपके अपने मेजबान राणा अशफाक के साथ। लेट्स गो एंड take a break.

और मेरा साथ होता है संडे की शाम 7 से लेकर 8 बजे तक। प्रोग्राम के हम आखिरी मरहले में पहुंच गए हैं और आखिरी मरहले में पहुंचते पहुंचते पाकिस्तान का स्कोर पहुंच गया है 115 रन 4 विकेट के नुकसान पर। साउथ शील्ड स्टिल होल्डिंग द फोर्ट फॉर पाकिस्तान एंड रिजवान द विकेट कीपर बैटर इज अलोंग साइड हिम। जो दुबई में मुकाबला जारी है इंडियन वुमेन और थाईलैंड वुमेन के दरमियान, उसमें इंडिया की टीम का स्कोर है 64 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि खेल जारी है 6th ओवर का। आजकल वुमेन के मैच भी बड़े तवातर के साथ होते हैं इंटरनेशनल गेम्स, और इंडिया की टीम भी एक उभरती हुई ताकत है जहां तक वुमेन का टीम्स का ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज यकीन अच्छी टीम्स हैं, लेकिन इंडिया की टीम बहुत तगड़ी अब हो गई है। रावल खेल रही है 12 रन पे 8 लेने के लिए एक चौका छक्का लगाकर, और शिफाली वर्मा ने 33 रन बनाए हैं 17 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाया है। थाईलैंड वुमेन की दायरे की बहुत अच्छी हिस्ट्री नहीं है जहां तक जीतने का ताल्लुक है। इंडिया की टीम यहां हॉट फेवरेट है, इस बात में कोई शक नहीं है, और देखना यह होगा कि इंडिया की टीम कितना बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा करेगी और फिर थाई वुमेन किस तरह से उसका ताकुब करने की कोशिश करेंगी। ये तो एक मैच का हमने जिक्र किया जनाब। इसके अलावा एक लीग भी जारी है, 8वां मैच है उस लीग का जो कि डीबीडी और ईसी के दरमियान खेला जा रहा है, और ये यूरोपियन टी20 लीग है। 15 ओवर के बाद बना लिए हैं पहले बैटिंग करने वाली साइड डीबीजी ने 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उसका स्कोर कार्ड जरा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इन्होंने जी जनाब पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, इनका पूरा नाम है डबलिन गार्डियंस। जेम्स विंस बना सके 40 रन, बड़ी अच्छी बैटिंग की, 30 गेंदों में 5 चौके 1 छक्का लगाया। मोहम्मद वसीम 6 रन बना पाए। हैरी टेक्टर आयरलैंड के खिलाड़ी ने 4 रन बनाए। डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने 3 रन बनाए। बेन डाल्टिस ने 4 रन स्कोर किए। संजय कृष्णामूर्ति 24 रन पे नॉट आउट है 1 चौका 1 छक्का लगाकर। जॉर्ज टॉकवेल ने 2 रन बना रखे हैं 3 गेंदों पर। रविचंद्रन अश्विन जो कि टीम के कैप्टन है उन्होंने बनाए ऑफर, और क्रिस वुड नॉट आउट है 1 रन पर, जबकि 3 एक्स्ट्रा और 8 विकेट पे स्कोर है 95 जबकि 16वें ओवर का खेल जारी है। पहली विकेट 21 पे गिरी मोहम्मद वसीम आउट हुए, दूसरी 45 पे हैरी टेक्टर आउट हुए, तीसरी 54 पे डेरिल मिचेल, चौथी 60 पे जेम्स विंस, पांचवी 61 पे गिरी जब आउट हुए थे कार्टिस, छठी विकेट 65 पे गिरी जब जॉर्ज टॉकरेल आउट हुए, 7वीं विकेट 83 पे गिरी जब अश्विन आउट हुए, और 8वीं विकेट 95 पे गिरी जब संजय कृष्णामूर्ति आउट हुए। 2 ओवर के ट्रेंट बोल्ट ने जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से 15 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया। टॉम करन इंग्लैंड के 3 ओवर 21 रन 1 विकेट। मार्क वॉक ने 4 ओवर किए 28 रन कोई विकेट नहीं। जैक जारविस 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लेफ्टार्म स्पिनर 3 ओवर 10 रन 4 विकेट। जेजे स्मिथ 2 ओवर 15 रन और 1 विकेट हासिल है। तो डबलिन गार्डियंस पूरी तरह से दबाव का शिकार हैं और देखते हैं कि 20 ओवर पूरे खेल पाते हैं तो कितने रन जनाब। न्यूज इस लीग का ताल्लुक है। डेट्स विकेट जनाब गिर गई है, दे आर नाउ 5 डाउन 415 और अब मैं समझता हूँ कि आई थिंक इट इज गेम ओवर फॉर देम कहना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान द लेटेस्ट डिसमिसल। मोहम्मद रिजवान ने जो है 1 रन बनाया 9 गेंदों पर, कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाए जनाब, और रॉबिन्सन ने 1 और खिलाड़ी आउट कर दिया है। तो अब क्या किया जाए जनाब, कैसे किया जाए, कौन करे, कुछ समझ से बाहर है। पाकिस्तान